0: है सांबा, जिंदगी की बरसात है, आज रात है, टाइम पास है।
1: दिव्य एफएम नुवादी है 1 मेगाहर्ट्ज़। दिव्य हिंगे मोनिफु फिल्वा देनुमुगा अबदुस।

0: 후숙의 포션에 비해서 에르쿠람 이제 해내 너.
1: 아마 소샤한테 후 미 있나 레버 레버.
0: 일라히 아다게 일라히.
2: 오 마이 갓. 오 마이 갓.
0: 누니케 यार दुसुमा बुने के अनिंग हिम विस बाला ली में हम वर रंगल गोते कम वाई मैं भी संग बजे नो इतने रंगल किया दे
1: तो देंग हम रंगल आडुना हाँ
0: आई क्या हम आडुना हाँ हो रहे हैं है नहीं ये हो रहे हैं
2: अल्ले
0: ये हम रंगल गोते के
2: नो ये दागल विस दे में या कोई
0: नून के हम ये रंगल बाला फदो दुसुमा ये दो हो फाही या काका ते ने आशी दाकरने दुसुमा ये हम बुन में फुरत में फाही आशी सम वरंग है राम दे एक हम रिसर्च खोल दे दो खोल दे हम वर रंगल गोते कम वनी ये गे दिबे आटा फुशुल दिबे वारे गिना ए फायदा ता हम हाशी कंडंगे आने के तिबे
2: नॉर्मल फूंग एड कुरे
0: ओह नॉर्मल फूंग एड कुरे ने राहा मेरो कुर मुगे बे
1: नॉर्मल लाने फू एड को फूट तो सेइंग आने अच्छे बुढ़ने आएगे एड वन ते जिन्ना नहीं हम आता
0: हाँ एडवांटेज लिबे ए फायदा
1: हाँ
0: तो असु राहमीर कोल्लं हुसाटा का मी हुन्ना तंकोले नुबावन्या ये राहमीर कोल्लं मुगे बेन मुगा माइक्रोवेव को
2: दुसुमा बुनी वाह के हित कर ना दे हो ऐसे कोलो मिस्से नुए है यो ते अमिल ले फू मोड़े रोगा ते कर नुए गंगुले ऐसे दुसुमा या हानी
0: मिहार वाह बत की नूने के मिहार आठ आठ फू गन के ने नूने मी उले नहीं है मैं हित कर ना पूरी फुशन नुए नू पुरा
2: है मैं जी अपना है वेदाने
0: पूरी फुशन नुए नू पुरानी
2: मेसेज हमें रोशी जहा ला पीएसए में जहा रोशी नूनी देफु फाही देफु
0: देफु बिजियानी के
1: देफु
0: देफु बिजियानी के एरर आ रहा है मैं कौन देफु शेकर देफु
1: फुशे फुशे जाने
0: तो बस दूसरों माँ कौन का मैं गोती दे मिया तो
1: नहीं का मिया तो दें फूल और ना तो सुन इच्छा का दें दातुरो
0: को ओ ये दातुरो दिए तो रंगल दें कामे प्लेन कोल्ला फ एकं कोफ्फा था थी होती तो बंदू तेरे तो
1: आह दे मेरे तो चेस्ट सो है ना मेरे तो स्कूल उन्हें वाला खान तो तनो हूँ ना दे मैं हमें आधा ये तो दिन दोस्ता
2: मैं दिन ब्रॉडकास्टिंग दोस्त भी मा मिजो हम ही तंगेरी आने दोसो मास्लो में फुरत हम रेडियो टीवी आडवा हा बालम फिशी कोंगे रखो भाई हाँ दांगे बुरी ता एम में फुरत हम आडवे हूँ ना प्रोग्राम है
1: दोसो माय में फुरत हम आडवे प्रोग्राम हाँ दांगे नो रे सब दोसो मा वाला काम दे अस्सो बोना या दिए राज्य आडवे हम फाते हो रहे ना అనే గురువాణ గురువాణ తర్జమాయ అదే ఫస్ట్ ఎడ్ బ్యాగ్ ఇన్న ಅಣೆ ಹಾಗುವಾಡೆ ಏತದೆ ಏ ಎಂಬೆ ಹಮದಾಯ ಸೇರಿ ಅದು ಕೊಮ್ಮೆ ತೊರೆಯ ಸಂಪತಿ ಹೋದೆ ಬರ ಹಿಂಗ ಮಜೆಕ್ಕ ಕುರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದ್ದ ಹಂದ ಅಂತ ವಾಣಿ ಎಚ್ಚಾಡು
2: ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
1: ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ

0: नसीबन कौन कंडान नसे कम बराबर हम आएंगे
1: हाँ
0: जब बॉर्डर रंगलवान थी रोट्टे केवे दुआ को मत
1: सही दो
0: मीजू में बराबर हम आएंगे दोस्तों माँ कोल्ला वेगेनिस्ते भी दूसरों मार रिक्वेस्ट को फमियती दूसरों ये दिखुरी आ रहा हमारा तो
2: ठे दे
0: कोबा दूसरों माँ दूसरों माँ
1: अब्बा
0: आ ये बुरे बुरे यार दूसरों माँ की ये दे ये मिक्स कोरी था ठे दे
1: एक आले इसको मैं लो नहीं हमें यार दिए
0: दूसरों माँ दूसरों ये दिखुरी आ रहा हमारा इलावा तो आ हाँ पैन त
1: हाँ तो कॉलोन दे फाही इन्सु देखो देना दें फैमिली
0: ओके हाँ मिला वा गेनेस्टे ना मिला राव गला वे जहाँ दी फेंगे ओके

0: सांस से। बाय लवता की नुनी में वाहक तक के ये वाहक ता मिहारु आ अड़का आ रूह काय ए फोरिया ए जोश किंगुस्तनी मुलिं एहिं दुनिया का
1: दिवाली ऐसा क्या वाइट तू जाऊन उठ न बिट न लाऊन ये की तू तेरे भाई के राड़े नहीं देख तू इधर कच्चे तू
2: हावो अदे रिमिक्स की बदले नो एक हमको लवे के निस्ते आ दिरु में
0: को में हो मत वही के मिंदरु दे जहार
2: रिपीट अंगार दो हो गेरे दिहे जहार अदे बुदा दो हो गेरे बार जहार
3: नॉक नॉक तेरा बाप
4: Version 2.0
5: Version 2.0

0: ती वही एफएम 91 मेगाहर्ट्ज़।
1: ती एहुं तेरिंगे एमे मकबूल फन्नानुंगे लवते एंगिनी की हावरका ए फन्नानुंगे मौदुमा तेंगिनी की हावरका

0: मी मरियम रिफ्का रशीद, रिफ्का गैड, दिवही एफएम, दिवही एफएम, दिवही नाइक, दिवही नाइक।
1: मोदी है एक मेगाहर्ट्ज़, दिवही एफएम।

0: नुआ दी है 1 MHz दिवे ही FM मगरिब नमाद वगत
1: अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: को बा
1: बादाम को या
0: बादाम को या है ए लगा के नांगेंगे ता
1: बादाम के नाम नांगेंगे तो
0: रोन वे दुरु
1: हां सुनो हम को ना दव दव वाने हां
0: देन देन लवे की
1: देन यूनी देन यूनी वास्तु नोडा ना मांदा ने
0: आ आलू गाडवा हाल बा